बेदा कोने पे डीजे नशे में पड़े दूध किसी के यहाँ पे बंजे बचीजे सबके फोनों पे कॉलों पे कॉले लौंडे नी सोले नोटों की गड्डी वो उड़ाते वो जो करे नी कॉले जमाना रन दिस ईयर वन लेस फियर आई एम लेट दे गो रन दिस शिट 100 इयर्स लेटर आई फील इट समथिंग्स नियर पेन शार्पर देन अ मदरफकिंग हंटिंग स्पीयर क्या यही है पावर आई एम अ डू दिस फॉर आवर्स एमसीस करे रेन चेक